0: गराउने अन्तिम मिति यही भाद्र 29 गते बिहान 10 बजेसम्म।
1: थिम दर्ता शुल्क 500 रुपियाँ।
0: प्रतियोगिता हुने स्थान शुक्ला गण्डकी 4 दोलेगौंडा बेपी चोक।
1: प्रतियोगिता शुरू हुने समय बिहान 11 बजे।
0: आयोजक शुक्ला गण्डकी नगर उद्योग वाणिज्य संघ ओडा व्यवस्थापन समिति ओडा नम्बर 4।
1: सह आयोजक शुक्ला गण्डकी नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 को कार्यालय।
0: थप जानकारीको लागि सम्पर्क 98061166 98461493004 र 98462026743।

0: पोखरा पोखरा नुडल्स प्रालीको उत्पादन बोनस चाउचाउको आधिकारिक विक्रेता थापा सप्लायर्स शुक्ला गण्डकी साप सेरा प्रोप्राइटर राजबहादुर थापा मोबाइल 9856202979
1: प्रणाम अभी अपने सुनतनी रेडियो ढोरबराई 103.8 मेगाहर्ट्ज अंतर मन के आवाज।

0: साहेबान कदरदान मेहरबान अब दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी।
1: ये निगाहें नश्तर, ये होंठ कौसर, मेरी आगोश में होश भी बेहोश हो।
2: अब भी वक्त है निकलने वालों, नहीं तो कल सुबह अफसोस होगा।
1: ये शोखी, ये अदाएं, ये बांकपन, इनकी कीमत भला दुनिया तय कर सकती है क्या?
2: अच्छा चल इतना बता, तीनों का मिला के पैसे से कुछ कम करती है क्या?
1: बरखुदार, हुस्न का मजाक न उड़ा, कहीं हुस्न के हाथों तेरा मजाक न बन जाए। मन चला है, खूबसूरत है, मगर लड़का है तू, तुझे लड़कों और मर्दों में फर्क कौन समझाए?

0: चढ़ जा कहाँ की
1: अदा
0: भी
1: बड़ा बेशरम है तू तो लिखा है बड़ा
0: ये
1: कमर
0: छुपा ले
1: नजर
0: घुमा ले
1: पता
0: मैं पूछूं।

0: जा उधर जा न सुनू न जाऊं
1: ऐसे बन रहा है जैसे कोई तोप है न मजा
0: न चाहूं न काटूं न पूछूं क्यों खेलूं
1: होप ऐसे है तो मेरे थोड़ी होप है
0: हाँ चल गई

वहम गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।